किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों के गीले आंसू चलते हैं।

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे।

0: दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है।
1: लाख बार उसमें

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

दूसरों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

के 6 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त है। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप और 107.9 FM रेनबो। दिल से दिल तक वे इस कार्यक्रम में रहूंगी मैं आपके साथ पूरे 11 बजे तक। ढेर सारी बातें और सुनेंगे साथ में कई नगमे।

आज बातें होंगी साधना शिवदाशिनी की, क्योंकि आज के दिन उनका जन्म हुआ था, 2 सितंबर 1941 को कराची के, अब जो पाकिस्तान में है, यहाँ उनका जन्म हुआ था। 22 दिसंबर 2015 में मुंबई में उनका निधन हुआ। उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा का मिस्ट्री गर्ल और एक स्टाइल आइकॉन के रूप में जाना जाता है। बातें उनकी होगी तो कुछ नगमे उनके भी होंगे, है ना। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप और मैं आपकी दोस्त सुचिश्मिता आप सबके साथ और नॉनस्टॉप गपशप में आज होगी बात साधना और साधना के साथ साथ आज हम बात करेंगे साधना सिर्फ दार्शनिक के साथ साथ कई विषयों पर। वैसे दोस्तों नॉनस्टॉप गपशप में आज जो हम बात करेंगे जी हाँ साधना सिर्फ दार्शनिक की और साथ में तो दोस्तों हिंदी सिनेमा में इतिहास में कुछ अभिनेत्रियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्होंने सिर्फ अपने अभिनय से नहीं बल्कि अपने पूरे अंदाज से जो है हमारा मन मोह लिया था। उनके अंदाज के लिए भी हम उन्हें याद करते हैं। शारदा शिवदाशनी भी ऐसी ही एक शख्सियत थी। उनका जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची में हुआ था, यानी आज उनकी जयंती के अवसर पर उनकी फिल्मी यात्रा को याद करना तो बिल्कुल खास बन जाता है। साधना के फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, सादगी, रहस्यमय मुस्कान और खास तौर पर उनकी मशहूर साधना कट हेयर स्टाइल उन्हें फैशन आइकॉन बना दिया। फैशन बदलता रहा लेकिन कुछ अंदाज फैशन बन जाते हैं, जैसे साधना कट, ये भी एक अंदाज ही तो है। अब जरा यादों के गलियारे में चलते हो, जहाँ साधना की खूबसूरती और हिंदी फिल्म संगीत की मिठास एक साथ है, तो सुनते हैं अगला गीत।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

हो रही है साधना शिवदाशी की। तो दोस्तों याद करिए लता जी की आवाज और साधना का वो रहस्यमय अंदाज, हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गीत दृश्य में से एक। और दोस्तों मैं बात कर रही हूँ उस गीत की, उस फिल्म की, जहाँ साधना की फिल्म में की बात हो तो मेरा साया ये फिल्म कैसे याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो रुक करेंगे, इस फिल्म के गीत को सुनेंगे। साधना की फिल्मों में रोमांच होता था, रहस्य होता था, भावनाएं होती थी और सबसे बड़ी बात एक ऐसा आकर्षण जो आज भी दर्शकों को अपनी ओर खींचता है। रुक करते हैं गीत की ओर।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:34 स्टूडियो के घड़ी में वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ और बातें हो रही हैं। आज एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा साधना जी दोस्तों बातें हो रही हैं, साधना शिवदाशिनी की। और अगर उनकी बात फिल्मों का बात करें तो उनकी कई फिल्में थी जो हमारे जहन में आज भी है। वो कौन थी, मेरा साया, आरजू, हम दोनों, ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने जो है अपनी अदाकारी से हमारा दिल जीता और अपनी खूबसूरती से हम सबको जो है अट्रैक्ट किया है ना।

और अब एक चुटकी नुस्खे में हम सबसे पहले आपको जो नुस्खा बताएंगे वो ये कि सुबह उठकर बस जो है दिन की शुरुआत करिए अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोच के। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच के उठ गए, सुबह सुबह उठ के बस सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए और अपने बारे में कुछ अच्छा सोचिए। आज मेरा दिन अच्छा जाए, आज दिन बहुत खास है क्योंकि आज मुझे कुछ अचीव हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा कि कितनी खूबसूरत हूँ मैं, बस मुझसे ही किसी की नज़र ना हटे, ऐसा कुछ भी जो पॉजिटिव आपको लगता है कि मुझे मेरे लिए चाहिए, यानी कि आपको अपने लिए

0: जो भी पॉजिटिव चीजें चाहिए उसे सुबह उठकर अपने बारे में सोचें। दूसरा नुस्खा जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी वो ये कि दिन में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, जिस वक्त आप किसी स्क्रीन के सामने ना हो, ना मोबाइल, ना टैब, ना लैपटॉप, ना फ़ोन, ना टीवी, ना कोई स्क्रीन, बस अपने लिए थोड़ा सा वक्त है, जहां आप अपने साथ बैठ सके, अपने बेहद करीबी कुछ लोगों के साथ बैठ सके, अपने घर वालों के साथ बैठ सके, या फिर सबसे बेहतर है अगर आप किसी छोटे बच्चे के साथ या फिर किसी बुज़ुर्ग के साथ थोड़ा सा समय बिता सके। इससे आपके मेंटल हेल्थ को बहुत बहुत बहुत हेल्प होगा। इसके बाद अगर एक चुटकी नुस्खे की ही बात है तो सबसे ज़रूरी नुस्खा जो आज मैं आपको देना चाहूँगी वो ये कि अगर आप परेशान हैं, गुस्से में हैं या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं किसी चीज़ को लेकर, तो बस उस वक्त कोई बड़ा फ़ैसला मत करिए, कोई बड़ी कमिटमेंट मत करिए, कोई बड़ा प्रॉमिस मत करिए। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, ज़रा सोचिए, उसके बाद जो भी अपना कमेंट है वो सामने वाले को दीजिए।
1: नुस्खे

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

साधना शिवदासी के जन्मदिन पर आज बात हुई उनकी उनकी खूबसूरत यादों की, उनकी खूबसूरत अदाकारी की और बेहद प्यारे प्यारे नगमे। 2 सितंबर का दिन और आज का दिन आपको हमने याद किया, हमने साथ में साधना शिवदासिनी को। घरे बता रही है 10:51 और रुक करते हैं अगले गीत की ओर। मैं शुचिश्मिता आप सबके साथ 107.8 FM ट्रेन बो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को।

10:55 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और एक कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ छोड़ जाऊंगी आपको इस वादी के साथ कि मिलूंगी ऐसे ही किसी कार्यक्रम में दोबारा. सो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, साथ रहिए और सुनते रहिए 100.1 FM गोल्ड FM रेनबो. FM रेनबो पे सुन रहे थे आप कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप और कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सबके लिए.

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: देखिए, आपका जो ये प्यार है ना, ये हमें किसी भी परिस्थिति से निकाल सकता है, और इसलिए आज सड़क पर लगा कि बस अब तैरना ही बाकी है, इतना पानी चारों तरफ, लेकिन फिर भी हम आपसे मिलने आ गए। क्या आप भी मेरी तरह सड़क से गुजरते हुए पानी में तैरते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं? अगर पहुंचे तो बस ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आज जो हुआ ऐसा अक्सर आजकल हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा आज हुआ है, पिछले कुछ दिनों से कह सकते हैं कि पिछले महीने भी यही हाल था, और ये चल रहा है। अभी बारिश जो है वो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा रुला रही है। सड़कों पर बहुत पानी, घुटनों तक पानी कहीं कहीं, और वहीं पर फिर आप अपना जो आपको जहाँ जाना है, अपना जो रास्ता है आपको बनाना है खुद ही, और उसको काटते हुए आप आगे बढ़िए, चीरते हुए आगे बढ़िए। लेकिन ये जानिए, यही आपकी तसल्ली है कि आप जो है ना, आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं। तीन का तड़का लेकर हाजिर है चैनिका, फिल्मी बातें करेंगे 3:30 बजे तक।

सुन रहे हैं आप तीन का तड़का और फिल्मों की बातें हम करेंगे दोपहर 3:30 बजे तक। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 3:12:50 से एकदम सही समय है ये, अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। और जितना भी गीला था उसे अगर आपने सुखा लिया है या अभी तक सुखा नहीं पाए हैं तो सूख जाएगा। ये गीला सूखा ये तो चलता ही रहता है, कभी आंखें भी तो गीली और सूखी हो जाती हैं जब जैसा मूड हो। उसी तरह मौसम का भी जब जैसा मूड हो वो हमको सुखा दे या गीला कर दे। अब खैर जो भी हो मौसम का मज़ा लीजिए, क्योंकि इसके बाद तो वैसे मतलब शरद ऋतु आएगी, आपका दिल बहलाएगी, उसके बाद सर्दियां आएंगी, वो भी आपको बहुत लुभाएंगी, आपको अच्छा अच्छा बहुत कुछ खाने को मिलेगा। क्योंकि सर्दियों की जो प्रोड्यूस होती है, जिस तरह की खेती होती है, जिस तरह की सब्जियां बाज़ार में मिलती हैं, आप इतनी ज़्यादा इनोवेशन किचन में उसी वक्त कर पाते हैं, क्योंकि खाना बनाते वक्त आपको गर्मी नहीं लगती। तो ये सब तो अच्छे वाले मौसम में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जो गर्मी आएगी ना उसके बाद, बसंत के बाद दोबारा जब लौट कर गर्मी आएगी, मार्च के भी मतलब ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करिए, तब आपको पता चलेगा कि अरे बाबा ये जो बारिश होती थी जहाँ पर हम मतलब घुटनों तक के पानी में आगे बढ़ते हुए, कभी अगर नहीं है गाड़ी, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो चलते चलते पानी में उतरना कैसा लगता था बाबा रे, वो याद करेंगे ना जब आप। लेकिन गर्मी आपको जब आंखें दिखाएगी तो लगेगा वो दिन अच्छे थे। गर्मियों से अच्छा है बारिश का मौसम, भले कितना भी पानी जम जाए। और इस मज़ेदार बात पर मैं आगे आपको एक सीरियस ही बात बताऊं, और वो ये है

कि अक्षय कुमार, वैसे हमने देखा एक ट्रेंड है उनका फिल्में किस तरह की वो किया करते हैं, एक साल में 3 से 4 फिल्में हमने देखी है उनकी रिलीज होते हुए। तो अभी खबर आ रही है कि जिम कॉर्बेट की बायोपिक को लेकर वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं, और एक उड़ती सी चिड़िया ने हमें ये बताया है कि जिम कॉर्बेट की बायोपिक के लिए अक्षय कुमार ने निर्देशक प्रियदर्शन संग हाथ मिलाया है। अब ये क्या बात है भाई, वो तो हैवान जो है वो फिल्म वो तो अभी भी फ्लोर पे ही है, अभी तक उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद आप इतना फास्ट जा रहे हैं, एक और फिल्म की प्लानिंग आपने कर ली। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार जब जब साथ आए तो स्क्रीन पर कुछ बहुत ही अद्भुत सुंदर देखने को हमें मिला है, तो ये एक वेलकम न्यूज़ है। लेकिन देखते हैं कि ये सही है खबर या नहीं, क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, फिल्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये खबर जो है ये फिलहाल हवा में तैर रही है। तो चलिए आप लोग कयास लगाइए और पता लगाइए, खुद भी सारी बातें नहीं बता दूँ, आप भी पता लगाइए कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। फिलहाल निकिता गांधी, अरिजीत सिंह, तू ही दिस डालेकर।

107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत प्यारे श्रोताओं, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है और ये योजना वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 साल तक लागू की जाएगी और देश के 100 जिलों को कवर करेगी। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि उत्पादन के साथ ही अन्नदाताओं की आमदनी भी बढ़ेगी। इससे कृषि क्षेत्र में पीछे रह गए जिलों में फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही अन्नदाताओं की आमदनी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की पहल से प्रेरित है। ये कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित अपनी तरह की एक यूनिक योजना है, पहली योजना है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना को 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के जरिए लागू किया जाएगा। योजना के लिए कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण जैसे 3 खास पॉइंट्स के आधार पर 100 जिलों की पहचान की जाएगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जिलों का चयन नेट टॉप एरिया और ऑपरेशनल होल्डिंग्स के आधार पर किया जाएगा और हर राज्य से कम 1 जिले का चयन अवश्य ही होगा। योजना की इफेक्टिव प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी। जिला स्तर पर एक जिला धन धान्य समिति बनेगी जिसमें प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे और ये समितियां एक जिला कृषि और संबद्ध गतिविधि योजना तैयार करेंगी जो प्राकृतिक खेती, पानी मिट्टी की रक्षा, आत्मनिर्भरता और फसल विविधीकरण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ी होगी। और इसकी निगरानी कैसे की जाएगी? मासिक आधार पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी। नीति आयोग भी जिला की जो ये जो योजनाएं हैं इसकी समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा और इसके अलावा प्रत्येक जिले के लिए नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर योजना की समीक्षा करेंगे। और इस योजना के परिणाम स्वरूप क्या होगा? उत्पादकता में वृद्धि होगी, कृषि और एलाइड जो क्षेत्र हैं उनमें मूल्य वर्धन होगा, स्थानीय आजीविका का सृजन होगा और इस तरह घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हमने परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत बात की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

0: হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তদের জানাই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসবের সাদর আমন্ত্রণ। উৎসব স্থান ইসকন নিউ টাউন কলকাতা শাপুরজি বাস স্ট্যান্ড, 2রা সেপ্টেম্বর থেকে 5ই সেপ্টেম্বর 2026।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
2: कार्यक्रम के एकदम अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और चलते चलते चलिए बॉक्स ऑफिस की थोड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। अच्छा, 2 करोड़ में बनी हनुमान अंश ने कमाए हैं 50 करोड़, और ये जो डायरेक्टर हैं फिल्म के वो बोले कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सच में इस फिल्म के साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है एक चमत्कार ही है, और इस फिल्म को मिली सक्सेस के लिए डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ऑडियंस और बाबा नीम करोली जिनके जीवन पर आधारित है ये फिल्म, उनको उन्होंने धन्यवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है। और कुछ फिल्मों की सच में सक्सेस ऐसी होती है जो आपको अंदर तक बेहद खुशी का एहसास दिला जाती है। एक छोटी सी फिल्म जो ये रिलीज हुई, एकदम लगा कि ठीक है जैसा भी बिजनेस करे, जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो रिकवर हो जाए, लेकिन एकदम कहते ना कि एक डिवाइन एक यहाँ पर एंगल है। और आपको मैं अगर बताऊं कि ये फिल्म जो बनी वो केवल 1.7 करोड़ रुपयों की लागत पर बनी, तो आप अवश्य ही हैरान होंगे। और देखिए किस तरह से इतना अच्छा ये फिल्म बिजनेस कर रही है। अच्छी फिल्में बननी चाहिए, है ना, ऐसी फिल्में और बनी जिनसे प्रेरणा ले सके ऑडियंस। और अभी फिलहाल चलते चलते, क्योंकि यहाँ हनुमान अंश फिल्म का जब जिक्र हुआ, तो एक बजरंग बली वाला गाना आपको क्यों ना सुनवाया जाए बजरंगी भाईजान से।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियां और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाए।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
3: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
3: और सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
2: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहाँ कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहाँ के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
3: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
2: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गाँव और उसके आस पास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
2: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
3: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
2: जी।
3: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
2: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
3: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
4: Little Long Shangla returned from the school. She opened the door quietly

0: She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
1: Unshangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
2: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
1: Yes.
2: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
1: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
2: Yes, let us play.
0: She tied a scarf over Onshangla's eyes.
1: Now, tell me, what do I hold in my hand?
2: How can I? My eyes are closed. I can't see.
1: You can find out. Try it. What do I hold?
0: Onshangla touched it.
2: It is something soft. A flower.
1: Yes. But what flower is it? Smell it.
2: It is a rose.
1: Good. Now try another thing. What do I hold?
2: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
0: Onshangla took the bell and shook it herself.
1: Smart girl. What do I hold now? Do you know?
0: Onshangla touched it.
2: It is a glass.
0: She put one finger slightly into the glass.
2: A glass of water?
1: Are you sure? It could be milk or juice.
0: Onshangla tasted it.
2: Oh, it is not water. It is orange juice.
1: Good girl. Now, I will remove the scarf. You must tell what is in front of you.
0: She took off the scarf. Onshangla blinked and looked at her.
2: It is you, Ava. I see you. That was a wonderful game, Ava.
1: So, Onshangla, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. But the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy.
2: Yes, Ava.
1: Good girl.
0: Onshangla calls her mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar, direction of a clapping sound?
1: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम Seeing Without Seeing.
4: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई. मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना. हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ.
5: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया.
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है.
7: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो. सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
3: और इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
1: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
8: साथियों नमस्कार।
9: नमस्कार साथियों।
8: साथियों आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
9: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
8: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
9: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
8: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
10: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
11: तो सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
10: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
11: यस।
9: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
8: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
9: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
12: सू
10: जी,
12: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
10: जी हाँ।
12: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
10: जी डॉक्टर साहब।
12: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
10: मैं पूछती हूँ।
8: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
9: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
2: 15

0: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना।
2: 13, 12, 11। ओह जॉन्सी, अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
3: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
0: क्या कम हो गए हैं?
2: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
0: जॉन्सी उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
2: 6, now it's 6, 5, 4। ओह
0: जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी। मेरी तरफ देखो
2: सू, ओनली 4। ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
0: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
2: 3 पत्तियां।
0: पत्तियां?
2: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
0: हाँ हाँ,
2: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
0: क्या लगता है?
2: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉन्सी?
2: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
2: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
2: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओ जॉन्सी।
1: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
0: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
0: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
0: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
0: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
0: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
0: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
3: हाँ। दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: कुछ थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
0: जॉन्सी। कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
0: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
0: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?

0: मिस्टर बेयरमैन? उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेयरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
0: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
0: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
0: हाँ वही मिस्टर बेयरमैन।
1: ओ गॉड,
0: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या
0: कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है? सू
2: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेयरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेयरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉनसी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू,
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू,
0: हाँ
1: मास्टरपीस,
0: हाँ
1: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रही हूं।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लो, 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो।
2: हम साथ साथ।
3: 1990 के दशक की फिल्मों को हम आज कई वजहों से याद करते हैं। लाजवाब संगीत, आइकॉनिक रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्में, साथ ही मुंबई नॉयर क्राइम फिल्मों और फैमिली ड्रामा फिल्मों का आगाज और सुपरस्टार्स की बौछार। इनमें जो आज भी सबसे ज्यादा हिट है, सबसे ज्यादा फिट है, वो है 90s का म्यूजिक, 90 के दशक का संगीत, और उसी दौर का एक सुनहरा टुकड़ा आज के इस कार्यक्रम को रोशन करेगा। बहुत बहुत स्वागत आप सबका छाया लोक लेकर, जैनिका हाजिर है ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। फिलहाल घड़ी में समय 7:04:55, देखते ही देखते 7:05 घड़ी में समय। और जैसे कि मैंने कहा, वो सुनहरा टुकड़ा जिसके बारे में मैंने अभी बात की, क्या है वो उस 90 के दशक का सुनहरा सा टुकड़ा, जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सुन रहे हैं छायालोक के अंतर्गत आप लोग हम साथ साथ,
2: हम साथ साथ।

1990 के दशक में अगर आप बड़े हुए हैं तो आप मानेंगे कि शाहरुख खान और कुमार शानू की जुगलबंदी वाले गाने उन दिनों के नॉस्टैल्जिया को ट्रिगर करने के लिए काफी है, जो मैं आज करने वाली हूँ, जिन्हें सुनते ही आप सीधा टाइम मशीन में बैठकर 90s में वापस चले जाएंगे। तो इस पहले गाने से मैंने वो जो रग है वो छू ली, मैंने ट्रिगर कर दिया है आपका वो नॉस्टैल्जिया वाला पार्ट, वो जो दिमाग में वो जो हिस्सा है ना, जो सुप्त रहता है कभी कभी जागता है। तो नॉस्टैल्जिक हो जाइए मेरे साथ एक घंटे के लिए। और आज हम सुनेंगे

शाहरुख खान के वो गाने जो कुमार शानू ने गाए हैं। चैनिका के साथ आप सुन रहे हैं हम साथ साथ ओनली ऑन छायालोक। और अभी अभी राजू बन गया जेंटलमैन से ये गीत हमने सुना। आइकॉनिक गाना है ये, जहां एकदम शाहरुख खान की भी एकदम शुरुआती दौर की एक फिल्म, देव कोहली ने इस गीत को लिखा था, जतिन ललित का संगीत था। और वो दार्जिलिंग की वो टॉय ट्रेन, वो हेरिटेज वाली ट्रेन, वहां पर शाहरुख खान एकदम से, कहते हैं ना वो फ्रेश, एकदम यंग फ्रेश, और वहां पर ये खूबसूरत आवाज़ है। ये इतना डेडली कॉम्बो है, न जाने कितनी लड़कियों ने जो है ना वो उस वक्त उस दौर में आहें भरी होंगी। और अगले गीत की तरफ मैं रुख करूंगी। उस गाने के बारे में मैं बस दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। जो गाना मैं सुनवाऊंगी यस बॉस का गाना है, जब रिकॉर्ड किया गया था तो इसकी, मतलब जब गाना बना तो उसके हिट होने की पूरी संभावना मौजूद थी। और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो भी इस बात से राजी थे, वो भी जान रहे थे, ये बात मान रहे थे कि ये एकदम सुपरहिट गाना होने वाला है। लेकिन फाइनल कट में ये गीत रहा नहीं और हटाना पड़ा इसे। लेकिन वो सोच रहे थे कि इस गाने का क्या किया जाए, तो उसको इस अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया। और हमने तो बहुत बजाया है ये गाना मेरे कार्यक्रम में और भी बाकी लोगों के कार्यक्रम में, आपने रेडियो प्रोग्राम्स में गाना बहुत बहुत सुना है। लेकिन वो स्टोरी लाइन में, फिल्म की मुख्य स्टोरी लाइन में गाना उस तरह से इंक्लूड नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे कई गाने होते हैं लेकिन उनकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। ज़रूरी नहीं कि कहानी के साथ कोई एक गाना भी आगे बढ़े या कहानी को आगे बढ़ाकर ले जाए तभी वो गाना सुपरहिट होगा। कई दफ़ा हम ऐसे गाने सुनते हैं जो क्रेडिट्स के दौरान हम सुन पाते हैं, शुरुआत में अंत में, तो वो गाने भी तो हम पर कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं। तो ये वाला गाना यस बॉस का ऐसा ही एक गाना, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सबके लिए।

0: अपने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: हम साथ साथ

साथ साथ From the romantic charm of Dil Hai Mera Deewana and Raju Ban Gaya Gentleman to the timeless beauty of Do Dil Mil Rahe Hai Magar Chupke Chupke. Kumar Shanu ki awaaz jaise Shah Rukh Khan ke on-screen romance ka, unke on-screen presence ka heartbeat ban gayi ho. Aur yehi jo dhak-dhak hai, jo heartbeat hai, ise aaj hum mehsoos karenge. इस पहले घंटे में छाए लोग के हम साथ साथ लेकर चैनिका हाजिर है और बैक टू बैक जो दो गाने मैंने आपको

सुनवाए, अलग अलग फिल्मों से थे लेकिन एक ही शख्स ने दोनों गीत लिखे थे। पहला गाना यस बॉस से, दूसरा गीत डुप्लीकेट से, और गीतकार थे जावेद अख्तर। और संगीतकार यस बॉस के जतिन ललित और डुप्लीकेट के अनु मलिक। और चलिए अब मैं आपको सुनवाती हूँ एक बेहद खूबसूरत गाना। आज कोशिश करूंगी कि मैं बातें कम करूं और आपको बैक टू बैक बहुत सारे गाने सुनवाऊं, क्योंकि एक घंटे में कहाँ ही संभव हो पाता है कि पूरी तरह से एक इस इतने व्यापक विषय को समेटा जाए। तो चलिए सुनते हैं अभी हृदयनाथ मंगेशकर की ये कॉम्पोजिशन। फिल्म का नाम माया मेम साहब और इस गीत को लिखा गुलजार ने है। चलिए सुनते हैं ये वाला गाना, शाहरुख खान पर फिल्माया गया, कुमार शानू की आवाज में गाया गया ये खूबसूरत सा रोमांटिक सा गाना।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: हम साथ साथ

आपको अगर याद हो तो इस फिल्म की दो जो इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशंस थी जिसके लिए कुमार शानू को नॉमिनेशन मिला था, उनमें से एक ये गाना था और दूसरा था ये काली काली आंखें। फाइनली उस गीत के लिए उन्होंने अवार्ड जीता था बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में। और इस गाने की अगर मैं बात करूं, मुझे क्यों पर्सनली ये गाना ज़्यादा पसंद है, तो ये जो विडंबना है ना इस फिल्म में शाहरुख खान द्वारा निभाए गए किरदार की, वो इसमें बड़ी उभर कर आती है कि जो दूसरा अंतरा है वहाँ वो कहते कि मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल आवारा। तो एक एक प्रेमी है लेकिन साथ में वो एक बाजीगर भी है, उसने बाजी लगाई है कह सकते हैं कि अपनी जान की, अपना सब कुछ उसने दांव पर लगा दिया है, केवल वो प्रतिशोध चाहता है इसके लिए। और अगर हम फिल्म की बात करें, ये करियर चॉइस की अगर बात करें, किस तरह की फिल्म का चुनाव शाहरुख खान ने किया, तो एक बहुत रिस्की रोल था जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। ज़्यादातर जो उस वक्त के टॉप एक्टर्स थे उन सब ने ये जो पार्ट है वो टर्न डाउन कर दिया, कहा कि हम नहीं करें, क्योंकि

जिस तरह का एक नेगेटिव कैरेक्टर वो निभाना नहीं चाहते थे, जो मतलब पूरे फिल्म में सिलसिलेवार तरीके से लोगों को मारता रहता है और वो लीडिंग मैन है फिल्म का, इस तरह का एक बहुत रिस्की रोल शाहरुख खान ने लिया, एक्सेप्ट किया और उन्होंने स्टारडम को इस फिल्म के साथ रीडिफाइन किया। ये रोल उन्होंने क्या लिया, उनके करियर को चार चांद लग गए और वो ओवरनाइट सेंसेशन में तब्दील हो गए। और आपको बताना चाहूँगी कि अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड उन्होंने बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में इसी फिल्म के लिए जीता था। और जहाँ तक सवाल है कुमार शानू का, तो मैंने बता ही दिया, तो डबल बुनैन्जा इस फिल्म के लिए अभिनेता और उनके पार्श्व गायक दोनों को पुरस्कारों से नवाजा गया, बहुत बड़ी बात अपने आप में। तो ये गाना सुनने के बाद, बाजीगर का ये गीत टाइटल ट्रैक सुनने के बाद, चलिए थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये गीत लिखा था नवाब आरजू ने और संगीतकार थे अनु मलिक। और चलिए अब मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखा गया एक गीत आपको सुनवाती हूँ। जतिन ललित का संगीत है और फिल्म का नाम, बहुत ही एक प्यारी सी फिल्म, फिल्म का नाम कभी हाँ कभी ना।

पिछले साल जब शाहरुख खान 60 वर्ष के हुए तो देश के कोने कोने से बधाइयों की बौछार होने लगी और ये जो अलग तरीके का करिश्मा है इनका, जो सबके लिए इनको ख़ास बनाता है, हर दिल अजीज बनाता है, हमने ये जाना, ये माना कि सुपरस्टार जो है वो एक बार अगर बन गया तो फिर उस पायदान से वो कभी भी नीचे नहीं उतरता, ख़ासतौर पर अगर वो शाहरुख खान हो। तो ढेरों दिल छू लेने वाली गुड विशेस के साथ कुमार शानू का यादों से भरा एक संदेश अलग ही नजर आया और आज ये जो कार्यक्रम को मैं समेटूंगी इस संदेश के साथ ही मैं समेटना चाहती हूँ। बड़ी ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने उन सुनहरे दौर की यादों को ताज़ा किया था। तो उन्होंने एक पुराने वीडियो के साथ जिसमें शाहरुख खान ने एक और MC के साथ कुमार शानू को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वीडियो उन्होंने शेयर किया था अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर और लिखा था कि जन्मदिन की शुभकामनाएं, यह एक बहुत ही लंबा और खूबसूरत सफर रहा है, रियलिटी शो से लेकर माया मेम साहब, दिल आशना है, दीवाना, राजू बन गया जेंटलमैन, चमत्कार, चाहत, कभी हाँ कभी ना, बाजीगर, परदेश, DDLG, कुछ कुछ होता है, ये तो बस कुछ ही नाम है। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन्होंने आगे जोड़ा कि हम दोनों ने लगभग एक ही समय पर शुरुआत की और मुझे आज भी उनके करियर की शुरुआत में ही उनके लिए गाने का जो मौका मिला वो याद है, तब से लेकर आज तक वो मेरे सफर का भी एक बेहद खास हिस्सा रहे हैं। सोने जैसा खरा दिल रखने वाला इंसान।

लोग छाया लोग बरो 7 FM रेनबो पर पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग।

दावती इश्क इस गीत को आप सुन रहे थे फिल्म दावती इश्क से, और आप सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, और शुरू हो चुका है ये पोर्शन छायालोक का। तो दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:09, और आप सभी के स्वागत के साथ ये खूबसूरत सा तराना इस फिल्म से आप सुन रहे थे, यानी दावते इश्क फिल्म से आप सुन रहे थे। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अगला तराना, और इस बार जो तराना है ये तराना आप सुनेंगे फिल्म मेरे यार की शादी है से। तो आइए सुनते हैं इस गीत को 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकली यॉर्स पर।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में इस गीत को, जिसे फिल्माया गया था आमिर खान पर, और साथ ही साथ ऑन स्क्रीन नजर आई थी कटरीना कैफ। और स्टूडियो की घड़ी में इस गीत को सुनते सुनते समय हो चला है 8:20 और 30 सेकंड। तो दोस्तों, आप सभी के लिए कार्यक्रम छाया लोक में आज का अगला गीत आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर, अपनी दोस्त और होस्ट देविका को। और फिलहाल आप सभी के लिए अगला गीत है ये।

0: थे।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

फिल्म लाल सिंह चड्ढा से आप सुन रहे थे इस गीत को, और गीत था अरिजीत सिंह की आवाज में। जब आवाज हो अरिजीत सिंह की तो गीत अपने आप हो जाता है बेहतरीन, चाहे वो रोमांटिक तराना हो या फिर हो थोड़ा सा रॉक से भरा, लेकिन हर गीत में अरिजीत सिंह की आवाज एकदम परफेक्टली कैसे ब्लेंड हो जाती है। फिलहाल आप सभी के लिए अरिजीत की आवाज में तो नहीं लेकिन सुल्ताना के साथ ज्योति नूरन की आवाज में पेश है ये तराना, फिल्म का नाम हाईवे।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इस गीत को माया मैनू यानी फिल्म जर्सी का ये तराना, और इस तराने में जो आवाज थी वो थी साची टंडन की। और दोस्तों एक के बाद एक इन गीतों को सुनते हुए स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:38 और 47 सेकंड। तो आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें रेखा भारद्वाज की आवाज कह रही है ज़बां पे लागा नमक इश्क का। ये सुनते हैं इस गीत को राकेश पंडित के साथ, राजू सरदार की भी आवाज है रेखा भारद्वाज के साथ।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में आप सुन रहे थे फलक तक चल साथ में रे। इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय 8:51 और 54 सेकंड।

वेल फ्रेंड्स, इस गीत को सुनते सुनते फिलहाल हम स्टूडियो की घड़ी में उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर हम आपसे लेंगे विदा। चलते चलते आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये गीत, जिसे सुनते हुए मैं लेती हूं आपसे विदा। मोहित चौहान की आवाज, फिल्म का नाम तमाशा, गुड नाइट शब्बा खैर। कार्यक्रम छायालोक में बस इतना ही।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है।